सदा तेरी आस, सबको आसे तेरी बैठा। हे मेरे मालिक, इस संसार विच कौन ऐसा व्यक्ति है जेड़ा तेरी आस तो बिना जी रहे है। तेरे दर करते सब ने आस लाई हुई है। किसलिए? क्योंकि आप सब दियां आसां पूरियां कर दे हो। जिड़ा भी इस दर ते आस लैके आंदा है उदी आस पूरी हुंदी है। एवें नहीं कोई इत्थे आंदा, हर किसी दे मन दी कोई ना कोई आस जरूर है, पर शायद आस उत्थे कीती जांदी है जिथे पूरी हुंदी हो। ते जिथे कोई पूरी ना करे उत्थे कोई आस नहीं रखदा। सानू आप ते आस है, ए गल वखरी है, आस भी कई प्रकार दी है। एक गल दा ख्याल रखना, आस पक्की होवे कच्ची ना होवे। कर आसा आयो प्रभ मांगण, तुम पे खते सोबा मेरे आंगण। कर आसा आयो प्रभ मांगण, मैं बड़ी आस करके हे मेरे मालिक तेरे दर तो मंगण आया। कहिंदे ने मंगया फरीद ने भी, बाबा फरीद ने मंगया आस लाई। लिखो हुण आस कैसी है, साडे कलजुगी जीवां दी तरह नहीं, साडी आस ते बहुत कच्ची है। दो चार वर्षी गुरु घर आउने आ, आस पूरी हो जाए ते ठीक है, पंजवें दिन गुरुद्वारे ही नहीं वड़दे, साडी आस ही नहीं पूरी हुई। नहीं भाई, इस दर ते ते हर किसी दी आस पूरी हुंदी है। हां ये गल जरूर होई है कि जिस वेले आस पूरी होनी सी उस दिन तू आया ही नहीं, उस दिन तू दर छड्ड के ही चला गया। इत्थे ते रोज आ, रोज हाजरी पर, पता नहीं किस वेले अरदास मंजूर हो जानी है। आस पक्की रख के बह, ये ना सोच के पूरी नहीं होई, जरूर होवेगी। हुण बाबे फरीद दे किसे आस लाउनी है?

हे मालिक मैं ए आस ला के बैठा हे प्रभु मैनू कदो गल ना लावेगा, मैं ते इस आस विच बैठा वा हे प्रभु मैनू कदो गल ना लावेगा। हुण ए आस ते पूरी ताई हो सकदी है कि मनुख पक्की आस रखे, कच्ची ना हो, इतनी पक्की आस।

क्योंकि मन माड़ा कर्म भी ये माड़े सोचता भी माड़ा है इस वास्ते ता एहो जी लोका वास्ते।

एक संत मंडली शहर दे बाहर आई, जेड़ा मदन सी साधु सुभा दा बंदा, दूसरा भरा अमल ए अमलां विच लगा रहिंदा सी। जिथे महलां विच राग रंग हुंदे सन उत्थे मदन दे सदका कदी कदी कीर्तन भी होया करदा सी। संत मंडली महलां विच आंदी, कीर्तन करदी ते वापस अपने टिकाने चली जांदी। एक दिन चंद्रहांस तुरदा तुरदा संतां दे डेरे चला गया। जेड़े मुखी संत सन उन्हां चंद्रहांस नूं देखिया, मन बड़ा खुश होया, अपने कोल बठा लिया। एक राजकुमार सी, मोचित लगदा सी, संतां कोल बैठा रहा। हुण चंद्रहांस दा रोज दा कम बन गया, रोज संतां कोल आ जाना। इन्ना प्यार बनिया कि हुण संतां कोल ही रहण लग पिया। उधर मदन ने महापुरशां नूं महलां विच बुलाया, कीर्तन तो बाद लंगर शुरू होया, पंगतां लगियां। जेड़े मुखी संत सन चंद्रहांस उन्हां दे कोल बैठा सी, सारे लंगर छकन लग पए। त्रिष्ट बुद्धि वजीर

फिर श्रीमती वजीर कहन लगा केड़ा राना केड़ी ऐसी गल उस परमेश्वर दी तुहानू याद आई है तुसी हस पए हो। संत कहन लगे उस परमेश्वर दे रंग भी न्यारे ऐ दुष्ट बुद्धि वजीर ऐ जड़ा यतीम राजकुमार चंद्रहास साडे कोल बैठा है।

है भगवान, कृपा कर मेरी रखिया कर। लिखे कई कई बारी चंद्रहांस इस तरह हाथ जोड़ के बहंदा हुंदा सी, ते कृष्ण भगवान ने भी बालक दा रूप धार के कोल बह के बांसुरी वजाया कर। क्योंकि भगतां दा मन बड़ा कोमल हुंदा है, साफ हुंदा है, ते रब जिन्हां दा मन कोमल होवे।

चंद्र हंस अरदास करन लग पे। उस परमेश्वर ने जलादां दे मन विच दया पा दित्ती। जलाद जिहड़े सन एक दूसरे नूं कहण लगे, इस बच्ची ने साडा की विगाड़िया। सारा शरीर चंद्र हंस दा उन्होंने देखे है। एक पैर दिया छे उंगलां सन ते कहंदे ने छे उंगलां चंगियां नहीं हुंदियां। कहण लगे वजीर नूं ता एक अंग दिखाणा है शरीर दा। उन्हां पैर दी उंगल एक कट ली, खून वगन लग पे। उंगल लैके चंदनपुर वजीर कोल जा पहुंची। आखे चंद्र हंस नूं मार के असी नदी विच सुट दित्ता, इनाम ले लिया। वजीर खुश हो गया, चंद्र हंस मर गया। उधर चंद्र हंस सारी रात

पर डर नहीं मन विच महापुरुषां दे कोल रहण करके रब दे भरोसा हो गया सी। चंदनपुर दे कोल कुंतलपुर एक छोटी रियासत सी। एदा राजा कुलिंद

तुरैया कुंतलपुर आ गया चंद्रहांस नू ए वजीर एक पासे लै गया ते पुछिया बेटा चंद्रहांस तू कदी चंदनपुर गया भगतां दा मन साफ हुंदा है उन्हां दे मन विच वैर विरोध दी भावना नहीं हुंदी। चंद्रहांस ने कहा हां मैं छोटा हुंदा चंदनपुर रहिंदा सी संता महापुरशां दे कोल। ए सुन के वजीर नूं पक्का भरोसा किया बेटा तैयारी करो तुसी चंदनपुर चले जाओ राजे नूं मिल के फिर वापस आ जाना। उधर त्रिष्टभुजी वजीर ने अपने वड्डे लड़के मदन नूं चिट्ठी लिखी बेटा मदन ए जिहड़ा लड़का चिट्ठी लैके आ रहा है इस नूं बिख दे देनी बिख जहर नूं कहिंदे जहर दे के इहनूं मार देना।

रस्ते दे विच चिट्ठी खोल के ना पढ़ी, किसे दी चिट्ठी पढ़नी महापाप हुंदा। चंद्रहास ने वह चिट्ठी पग विच टुंग ली, घोड़े ते चढ़ के ए चंद्रहास चंदनपुर नू तुर पिया। ज्यों सवेर दा तुरिया, शाम दे वेले चंदनपुर जा पहुंचे है।

किसी बारे ना माड़ा सोचो ना किसी नू माड़ा कहो दसवां नवां दी कीर्त करो हर इंसान दे नाल प्यार करो हर एक इंसान दे विच परमेश्वर वसदे ते जदों आपां इह समझ लवांगे सारिआं विच परमेश्वर है जे किसी बारे माड़ा सोचांगे ता समझो फिर असीं रब बारे माड़ा सोचदे हां इस करके सब नाल प्यार करो जदों सारे नाल प्यार करोगे ता सारिआं विचों तुहानूं रब दी झलक नजर आवेगी।

शीश के दुरंगे मित्रान के मृदंगी तेरो गीत गायत है मित्रान के मृदंगी तेरो गीत गायत है पर कोई न जाने तुम्हारा अंत कोई न जाने तुम्हारा अंत फरासी फरंगी फरासी के दुरंगी मिकरान के मर्दंगी तेरो गीत गायत है पखड़ी कंधारी

पर कोई न जाने तुम्हारा अंत पण को आहारी तेरो नाम त्यायत है पूर्व पलाऊ काम रूपों कमाऊ सर्व ठौर में बराजे जहां जहां जायत है सर्व ठौर में बराजे।

गावन तुनो मोहनिया मन मोहन गावन तुनो मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले